सर्वत सुख शांति देह अरोगता बक्षणी अंग संसायो न। शुक्राने बजाओ। सरदार कनवर शेर सिंह जी संधु लंगरा लई पंडार बहादुर कर दे देख देख पता रखनी अंग संसायो न। शुक्राने बजाओ। निर्मल जीत कार जी संधु।

करणी चढ़दी कला बख्शनी अंग संसाय होना हयात पैलेस अते रुमस दी ओपनिंग दे खुशियां वजा सरदार अमोलक सिंह जी गाखल आप जी दे अजूरी विच 1300 रुपए आदर कर दे कारोबार विच वादे बख्शने किरत कमाज बरकता पावनियां दे अरोगता बख्शनी स्वर्गवासी दर्शन सिंह परविंदर।

जैसे सूकर स्वान नानक मानो ताहे तन स्वामी को ग्रह जो सदा स्वान तजत नहीं नित नानक है बिद हर भजा एक मन होए एक चे।

संग रागनी पांचा थाप है गोण करी अर देव गंधारी गंधारी सी हुती उचारी धनासरी ए पांचो गाई माल राग को संग संग लाई मारू मा संग मेवारा प्रबल चट खौ सक उभारा खौ कटौ भौर आनंद गाए अष्ट माल को संग संग लाए पुन आयो हिंडोल पंच नार संग अष्ट सुत उठे तान कलोल गायन तार मिलावही तेलंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई सरस अहिरे ले पार जा संग लाई पाचा आर जा सुरमानंद भास्कर आए चंद्र बिंब मंगला।

कछेली पट मंजरी टोडी कही अलाप कामो दिया गुजरी संग दीपक थाप कालंका कुंतल और आमा कमल कुसम चंपक के नामा गौरा और कानरा कल्याणा अष्टपुत्र दीपक के जाना सम्मिल श्री राघव गावहे पांचो संग परंगन लावहे बैरारी करनाटी धरी गौरी गावे आसावरी तय पाछे सिंधवी अलापी श्री

जी गुरु गरीब निवास अंतरजामी सच्चे पातशाह जी महाराज आप जी के पावन स्थान हाजरियां भरते हुए गुरु की संगत वालों गुरबाणी के शब्द कीर्तन सत्कार करते हुए बेअंत माया अरदास कराई पातशाह सतगुरु आप जानी जन कृपा करनी रहमत बख्शिश करनी देह रुकता।

जहाँ दोहरा सरल द्वार को छाड़ कर गह द्वार द्वार माहे गह के लाज गोविंदा सवार दोहरा राज करेगा खालसा आगे रह ना कोई द्वार होए सब लेंगे बचे श्रम जो होए दोहरा उड़के सुबह मलेश के करकोड़ा प्रसाद डंगा वाले फते का नह कलंगतार तत्र चक्रवर्ती चतार चक्र भूते स्वयंभव सुभं सर्वदास जुगते दुकाल प्रणासी दयाल स्वरूपे सदा अंग संगे अपंग अंग भूते देख तेगो फतेह नसरते दुर्ग्याप्तज आज नान गुरु गोविंद सिंह जी से अकाल पुरुष सहाय दरबार में त्रिदरबार सच खंड वसे निरंकार।

अकर्मंग भरमंग अगंजे अलेखे भुजंग प्रयाद छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निर्कामं भिभूते समस्तं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सुधर्मं भिभूते सदा सच्चिदानंद सतंग प्रणासी करिमूल कुनिंदा समस्तं निवासी अजायब भिभूते गजायब गनी मे हरियं करिमूल रही मे चात्र चक्रवर्ती चात्र चक्र भुगते स्वयं भव स्वभंग श्रब्दा श्रब युगते दुकालं प्रणास

आदि पुरख अभगत अविनाशी लोग चतर जत जोत प्रकाशी हस्त कीट के बीच समाना राव रंग जय एक सरजाना अदमय अलख पुरख अभगामी सब घट घट के अंतर जामी अलग रूप अच्छे अनभेखा राग रंग जह रूप ना रेखा बरन चेहन सब हुते न्यारा आद प्रग अदमय अभिकारा बरन चेहन जय जात न पाता सत्र मित्र जय तात न माता सबते दूर सबंते नेरा जल थल महियल जाहे बसेरा अनहद रूप अनाहद बानी चरण शरण जय बसत भवानी ब्रह्मा विष्णु अंत।

सर्व ज्योत के बीच समाना, सब हूँ सर्व ठार पहचाना, काल रहत अनकाल स्वरूपा, अलख पुरख अवगत अवधूता, जात पात जह चेहना बरना, अवगत देव अक्षय अन भरमा, सबको काल सबन को करता, रोग शोक दोकन को हरता, एक चेत जह एक छिन ध्यायो, काल फांस के बीच ना आयो। तो प्रसाद कबित कत हूँ सुचेत हुए के चेतना को चार कियो, कत हूँ अचेत हुए के सोवत अचेत हो, कत हूँ भिकारी हुए के मांग।

कहूँ बेदरीत कहूँ तास बेपरीत कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सरगुण समेत हो कहूँ जाज गंधर्व रक कहूँ विद्याधर कहूँ भय किन्नर विषाद कहूँ प्रेत हो कहूँ होय के हिंदुआ गायत्री को गुपत जपे हो कहूँ होय के तोर का पुकारे बांग देत हो कहूँ कोब काब होय के पुराण को पढ़त मत कतहु कुरान को निदान जान लेत हो कहूँ बेदरीत कहूँ तास बेपरीत कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सरगुण समेत हो कहूँ देवतान के दीवान में विराजमान कहूँ दानवान को गुमान मत देत हो कहूँ इंद्र राजा को मिलत इंद्र पद विसी कहूँ इंद्र पद भी छिपाई छीन लेत हो कतहु विचार विचारत को विचारत हो कहूँ निज नार पर नार के निकेत हो कहूँ बेदरीत कहूँ तास विपरीत कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सरगुण समेत हो कहूँ शत्रधारी कहूँ विद्या के विचारी कहूँ महारत हरि कहूँ नार के निकेत हो कहूँ देववाणी कहूँ शारदा भवानी कहूँ मंगला मिडानी कहूँ श्याम कहूँ सेत हो कहूँ धर्मधामी कहूँ सर्व ठौर कामी कहूँ जति कहूँ कामी कहूँ देत कहूँ लेत हो कहूँ बेदरीत कहूँ तास विपरीत कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सरगुण समेत हो कहूँ जटाधारी कहूँ कंटी धरे ब्रह्मचारी कहूँ जोग साधी कहूँ साधना करत हो कहूँ कान फारे को डंडी होय पतारे कहूँ फूक फूक पावन को पृथ्वी पर धरत हो कतहु सिपाही हो के साधत सिलाहन कहूँ छत्री हो के अरे मारत मरत हो कहूँ भू भार को उतारत महाराज कहूँ भव भूतन की भावना भरत हो कहूँ गीतनाद के निदान को बतावत हो कहूँ नृत्यकारी चित्रकारी के निधान हो कतहु पयुग हो के पीवत पीवावत हो कतहु मयूकू कहूँ मद पान हो कहूँ मासुर हो के मारत मासन कहूँ मादे देवतान के समान हो कहूँ मादीन कहूँ द्रव के अधीन कहूँ विद्या में प्रवीण कहूँ भूम कहूँ भान हो कहूँ अकलंक कहूँ मारत मयंक कहूँ पूरन प्रजं कहूँ स्वतता की सार हो कहूँ देव धर्म कहूँ साधना के हरम कहूँ कुतस कुकरम कहूँ धर्म के प्रकार हो कहूँ पवन हरि कहूँ विद्या के विचारी कहूँ जोगी जाति ब्रह्मचारी नर कहूँ नार हो कहूँ छत्रधारी कहूँ छाला धरे छैल भारी कहूँ छक्के बारी कहूँ छल के प्रकार हो कहूँ गीत के गवैया कहूँ बेन के बजैया कहूँ नृत्य के नचे कहूँ नर को आकार हो कहूँ बेदवानी कहूँ कोक की कहानी कहूँ राजा कहूँ रानी कहूँ नार के प्रकार हो कहूँ बेन के बजैया कहूँ धेन के चरैया कहूँ लाखन लवैया कहूँ सुंदर कुमार हो शोधता किसानों के संतन के प्राणों के दाता महादानों के निर्दोखी निरंकार हो निर्जोर निरूपों के सुंदर स्वरूपों के भूपन के भूपों के दाता महादान हो प्राण के बचैया दूध पूत के दिवैया रोग शोक के मिटैया की दोमानी महामान हो विद्या के विचारों के अदमे अवतारों के शुद्धता की सूरतों के शुद्धता की शान हो जोवन के जालों के कालों के कालों के सतरन के सूलों के मित्रन के प्राण हो कहूँ ब्रह्मवाद कहूँ विद्या को विखाद कहूँ नाद को निनाद कहूँ पूरन भगत हो कहूँ बेदरीत कहूँ विद्या की प्रतीत कहूँ नीत अनीत कहूँ ज्वाला सी जगत हो पूरा ने प्रताप कहूँ एकांति को जाप कहूँ ताप को अताप कहूँ जोग ते डिगत हो कहूँ बार देत कहूँ छल सिंह छिनाए ले सर्व का सर्व ठार एक से लगत हो तो प्रसाद सवैये श्रावक सोत समूह सिद्धान के देख फ्रियो घर जोग जति के सोर सुराद सोत सुदादिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को ना देखे तो प्राणपति के श्री भगवान की भाई कृपा हूते एक रत्ती बिन एक रत्ती के माते मतंग जरे जर संग अनूप तंग तुरंग सवारे कोर तुरंग तुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे भारी भुजान के भूत भली बेद न्यावत शीश ना जात बिचारे एते भय तो का भय भूपत अंत को नांगे पाए पधारे जीत फिरे सब दे दिशान को बाजा ढोल मृदंग नगारे गुंजत गुड़ गजान के सुंदर हिंसती है राज हजारे भूत भवे के भगवान के भूपत कौन गने नहीं जाते बिचारे श्रीपत श्री भगवान भजे बेन अंत को अंत के धाम सिधारे तीरथ नहान दया दम दाम सो संजम नेम अनेक विशेख वेद पुराण कतेब कुरान जिमीन जमान सबान के पेख
पौन हार जति जधार सबे सो विचार हजारक देखे। श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेखे। सो दुष्पा दुरंत दुपा सो सासना दुर्जान दलेंगे। भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हल्ले ना हलाएंगे। तोर अरीन मरोर बवासन मते मतंगन मान मलेंगे। श्रीपद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहां निदान चलेंगे। वीर पार बड़े बड़े आर विचारे सार की धार भछैया। तोर देह मलिंद बवासन माते के जान के मान मलैया। गाड़े गड़ान के तोड़न हार तो बातन ही जग चार लवैया। साहेब श्री सबको सिर नायक जाचन एक सो एक देवैया। दानव देव फनि निसाचर भूत भवेग भवान जपेंगे। जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब

तेने ही प्रभ पायो। काहुले पाहन पू धरियो सिर, काहुले लिंग करे लटकायो, काहू लखियो रवाची दिशा में, काहू पछा को शीश निभायो, को भूतान को पूजा दैवत, को मृतान को पूजन धायो, कूर क्रिया और जो सब ही जाके श्री भगवान को भेद ना पायो। तो प्रसाद

अवतार अनभेज रूप तुरंत सब जगत भगत महंत जस तिलक भूभृत भान दचार चार निधान अकलंक रूप अपार सब लोग शोक वितार कल काल कर्म विहीन सब कर्म धर्म प्रवीण अनखंड अतुल प्रताप सब थाप्यो जय थाप अनखेद भेद अछेद मुगचार गावत वेद जय नेत निगम कहंत मुगचार वकत बेअंत अनभेज अतुल प्रताप अनखंड अमित अथाप जय कीन जगत पसार रचो विचार विचार अनंत रूप अखंड अतुल प्रताप प्रचंड जय अंड ते ब्रह्मंड कीने सो चौदह खंड सब कीन जगत पसार अभ्यक्त रूप उदार जय कोट इंद्र निपार कई ब्रह्म विषण विचार कई राम कृष्ण रसूल बिन भगत को ना कबूल कई सिंध बिंद नगेंद्र कई मच्छ कच्छ फनेन्द्र कई देव आदि कुमार कई कृष्ण विषण अवतार कई इंद्र बार बुहार कई वेद अमुचार कई रुद्र छुद्र स्वरूप कई राम कृष्ण अनूप कई कोप का भणंत कई वेद भेद कहंत कई शास्त्र सिमृत बखान कहूं कतत ही सो पुराण कई अगन होत्र करंत कई उर्द ताप दुरंत कई उर्द भाव संन्यास कहूं जोग भेष उदास कहूं निवली करम करंत कहूं पवन हार तुरंत कहूं तीरा दान अपार कहूं जग करम उदार कहूं अगन होत्र अनूप कहूं न्याय राज विभूत कहूं शास्त्र सिमृत रीत कहूं वेद सिंह विपरीत कई देश देश फिरंत कई एक ठौर स्थंत कहूं करत जल मह जाप कहूं तह कहूं सहत तन परताप कहूं बाद बनह करंत कहूं ताप तनह सहंत कहूं गृहस्थ धर्म अपार कहूं राज रीत उदार कहूं रोग रहत अभरम कहूं कर्म करत अकर्म कहूं शेख ब्रह्म स्वरूप कहूं नीत राज अनूप कहूं रोग शोक विहीन कहूं एक भगत अधीन कहूं रंक राजकुमार कहूं वेद व्यास अवतार कई ब्रह्म वेद रटंत कई शेख नाम उच्चरंत बैराग कहूं संन्यास कहूं फिरत रूप उदास।

इंद के सदयता हीर की बटैया दे बंदरा सदी उपाय नंगे फिरत है। अंगना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक ज्ञान के विहीन छीन कैसे के तरत है। भूत बने चारी छेत छौना सब दूधाधारी पौन के आहारी सो भुजंग जानियत है। तृण के भछैया धन लोभ के तजैया ते तो गौवन के जैया ब्रेक भैया मानियत है। नब के उड़ैया ताए पंछी की बढ़ैया देश बगला बिलडाल ब्रेक जानी ठानियत है। जेते बड़े ज्ञानी तीनों जानी पे बखानी नाए ऐसे ना प्रपंच मन भूलानी आते है। भूम के बसैत है भूचरी के जैया के नब के उड़ैया सो चिरैया के बखानी है। फल के भचैया दाए बांदरी के जैया के आदेश फिरैया दे तो भूत के पछानी है। जल के तरैया को गंगे ऋषि का हाथ जाग आग के भचैया सो चकोर सम्मानी है। सूरज सिवैया दाए काल की बढ़ाई दे चंद्रमा सिवैया को कवि के पहचानी है। नारायण कच्छ मच्छ तेंदुआ कह सब कौल लाभ कौल जय ताल में रहते हैं। गोपीनाथ गुजर गोपाल सबे धेन जारी रिखी के नाम के महंत लही आते हैं। माधव भवर और टेरू को कन्हैया नाम कंस को बधैया जम दूध कही आते हैं। मूड रूट पीटत ना गौड़ता को भेद पावे पूजत ना ताहे जाके राखे रही आते हैं। विश्वपाल जगत काल दीन दयाल वैरी साल सदा प्रतपाल जम जालते रहत है। जोगी जटनाधारी सती साचे बड़े ब्रह्मचारी ध्यान काल भूख प्या देह पे सहत है। निवली करम जल होम पावक पवन होम अधोमुख एक पाए ठाडे न बहत है। मानव फनिन देव दानव न पावे भेद वेद और कतेव नेत नेत के कहते है। नाचत फेरत मोर बादर करत घोर गदामनी अनेक भाव करे हुई करत है। चंद्रमा ते शीतल न सूरत तपत तेज इंद्र सोना राजा भाव भूम को भरत है। शिव से तपस्या ब्रह्मा से न बेचारी सनत कुमार सी तपस्या न अनत है। ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिराई फिरत है। एक शिव भय एक है एक फेर भय राम चंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मा विष्णु के ते वेद और पुराण के ते सिमरत समूहन के होए होए बिताए है। मोदी मदार के ते असनी कुमार के ते अंसा अवतार के ते काल भज भय है। पीरा पैगंबर के ते गने न पर देते भूमि ते हो के फिर भूमि ही मिलाए है। जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रदारे छत्रे की छाया कहीं कोसलो चलते है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत दे बड़े बड़े राजन के द्रव को दलत है। मान से महीप और दिलीप कैसे छत्रदारी बड़ो अभिमान भोज दंड को करत है। दारा से दिल्ली सर दुर्योधन से मान थारी भोग भोग भूमंद भूम में मिलत है। सेज देकर अनेक तोपची कपड़ भेस ओस्ती अनेक दानी वावत है शीश का। कहा भयो माले जो पे कारण अनेक दंड सोतना डंडा अष्टांग तीस का। कहा भयो रोगी जो पे डारियो रहे उर्द मुख मनते न मुंड नेहरायो आदिस का। कामना अधीन सदा दामना प्रवीण एक भावना विहीन कैसे पावे जगदीस का। शीश पटकत जाके कान में खजूरा दसे मुंड छटकत मित्र पुत्रों के शोक सा। आँख को चरैया फल फूल को भचैया सदा भन को भ्रमया और दूसरो न भोग सा। कहा भयो भेड़ जो घस सी वृक्षन सो माटी को बछैया बोल पूछ ली जाय जोग सा। कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन कैसे भेटे पर लोग सा। नाचोई करत मोर दादर करत छोड़ सदा घन घोर घन करे ही करत है। एक पाए ठाटे सदा बन में रहत वृक्ष फूक फूक पाँव भूम श्रावक धरत है। पाहन अनेक युग एक ठोर बास करे काग और चील दे दे बेचरत है। ज्ञान के विहीन मादान में न हुजलिन भावना यकीन दिन कैसे के तरत है। जैसे एक स्वांगी को जो गया बैरागी बने कब हूँ सन्यास भेद बने का दिखा वही। कहूँ पौन हारी कहूँ बैठे लाए तारी कहूँ लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गा वही। कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पे लगावे वारी कहूँ दंड धारी होके लोगन भ्रमा वही। कामना अधीन परे नाचते नाचन सो ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोग पावई।
ਪੰਜ ਵਾਰ ਗੀਦਰ ਪੁਕਾਰੇ ਪਰ ਸੀਤ ਕਾਲ ਕੁੰਚਾ ਰਗਤ ਹਾਂ ਏਕਤਾ ਪੁਕਾਰ ਹੀ ਕਹਾਂ ਭਯੋ ਜੋ ਪੈ ਕਲਵਤਰ ਲਿਓ ਕਾਸੀ ਬੀਜ ਚੀਰ ਚੀਰ ਚੋਟਾ ਕੁਠਾਰਨ ਸੋ ਮਾਰ ਹੀ ਕਹਾਂ ਭਯੋ ਫਾਸੀ ਡਾਰ ਬੂੜਿਓ ਜੜ ਗੰਗਦਾਰ ਡਾਰ ਡਾਰ ਫਾਂਸ ਡਕ ਮਾਰ ਮਾਰ ਡਾਰ ਹੀ ਡੂਬੇ ਨਰਕ ਧਾਰ ਮੋੜ ਗਿਆਨ ਕੇ ਬਿਨਾ ਵਿਚਾਰ ਭਾਵਨਾ ਵਿਹੀਨ ਕੈਸੇ ਗਿਆਨ ਕੋ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਤਾਪ ਕੇ ਸਹਤੇ ਜੋ ਪਪਾਈਆ ਤਾਪਨਾ ਤਾਪਨਾ ਅਨੇਕ ਤਨ ਖਾਇਲ ਸਹਤ ਹੈ ਜਾਪ ਕੇ ਕੀਏ ਤੋ ਜਾਪ ਕੇ ਕੀਏ ਤੇ ਜੋ ਪੈ ਪਾਇਤ ਅਜਾਵ ਦੇਵ ਉਦਨਾ ਸਦੀਵ ਤੂੰ ਹੀ ਉਚਰਤ ਹੈ ਨਭ ਕੇ ਉੜੇ ਤੇ ਜੋ ਪੈ ਨਾਰਾਇਣ ਪਾਈਅਤ ਅਨਲ ਅਕਾਸ ਪੰਛੀ ਡੋਲਬੋ ਕਰਤ ਹੈ ਆਗਮੇ ਜਰੇ ਤੇ ਗਤ ਰਾਂਡ ਕੀ ਪਰਤ ਕਰ ਪਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ ਕਿਉਂ ਭੁਜੰਗ ਨਾ ਤਰਤ ਹੈ ਕੋ ਭਯੋ ਮੁੰਡਿਆ ਸੰਨਿਆਸੀ ਕੋ ਜੋਗੀ ਭਯੋ ਕੋ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਕੋ ਜਤੀ ਅਨਮਾਨ ਬੋ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਾ ਕੋ ਰਾਵਦੀ ਮਾਮ ਸਾਬੀ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਮੈ ਕੈ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ ਕਰਤਾ ਕਰੀਮ ਸੋਈ ਰਾਜਕ ਰਹੀ ਬੋਈ ਦੂਸਰੋ ਨਾ ਭੇਦ ਕੋਈ ਭੂਲ ਬ੍ਰਹਮਾਨ ਬੋ ਏਕ ਹੀ ਸੇਵ ਸਭ ਹੀ ਕੋ ਗੁਰ ਦੇਵ ਏਕ ਹੀ ਸਰੂਪ ਸਮੈ ਕੇ ਜੋ ਜਾਨ ਬੋ ਦੇਹੁਰਾ ਮਸੀਹ ਸੋਈ ਪੂਜਾ ਅਨਿਵਾਜ ਹੋਈ ਮਾਨਸ ਸਭੈ ਏਕ ਭੈ ਅਨੇਕ ਕੋ ਭਰਮਾਵ ਹੈ ਦੇਵਤਾ ਦੇਵ ਜਜ ਗੰਧਰਵ ਤੁਰਕ ਹਿੰਦੂ ਨਿਆਰੇ ਨਿਆਰੇ ਦੇਸਨ ਕੇ ਭੇਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਏਕ ਨੈਨ ਏਕ ਕਾਨ ਏਕ ਦੇ ਏਕ ਬਾਨ ਖਾਕ ਬਾਦ ਆਤਸ ਆਪ ਕੋ ਰਲਾਓ ਹੈ ਅੱਲਾ ਭੇਗ ਸੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਕੁਰਾਨ ਹੋਈ ਏਕ ਹੀ ਸਰੂਪ ਸਵੇ ਏਕ ਹੀ ਬਨਾਓ ਹੈ ਜੈਸੇ ਆਗ ਤੇ ਕਨੂਕਾ ਕੋਟ ਆਗ ਉੱਠੇ ਨਿਆਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਆਗ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਧੂਰ ਤੇ ਅਨੇਕ ਧੂਰ ਪੂਰਤ ਹੈ ਧੂਰ ਕੇ ਕਨੁਗਾ ਫੇਰ ਧੂਰ ਹੀ ਸਮਾਹਗੇ ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਨਦ ਤੇ ਤਰੰਗ ਕੋਟ ਉਜੰਤ ਹੈ ਪਾਨ ਕੇ ਤਰੰਗ ਸਭ ਪਾਨ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਤੈਸੇ ਵਿਸ਼ਵ ਰੂਪ ਤੇ ਅਭੂਤ ਭੂਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਤਾਹੀ ਤੇ ਉਪਜ ਸਭ ਤਾਹੀ ਮੈਂ ਸਮਾਹਗੇ ਕੇਤੇ ਕੱਛ ਮੱਛ ਕੇਤੇ ਉਨ ਕੋ ਕਰਤ ਭਛ ਕੇਤੇ ਅੱਛ ਵੱਛ ਹੋਏ ਸਪੱਛ ਉੱਡ ਜਾਹਗੇ ਕੇਤੇ ਨਾ ਬੀਜ ਅੱਜ ਪੰਚ ਕੋ ਕਰਾਂਗੇ ਭਛ ਕੇਤਕ ਪ੍ਰਤੱਚ ਹੋਏ ਪਛਾਏ ਖਾਏ ਜਾਹਗੇ ਜਲ ਕਹਾਂ ਥਲ ਕਹਾਂ ਗਗਨ ਕੇ ਗੌਨ ਕਹਾਂ ਕਾਲ ਕੇ ਬਨਾਏ ਸਭੇ ਕਾਲ ਹੀ ਚਬਾਹਗੇ ਤੇਜ ਹੂੰ ਤੇਜ ਮੈਂ ਤੇਜ ਜੈਸੇ ਤੇਜ ਲੀਨ ਤਾਹੀ ਤੇ ਉਪਰ ਸਭੇ ਤਾਹੀ ਮੈਂ ਸਮਾਹਗੇ ਕੂਕਤ ਫਿਰਤ ਕੇਤੇ ਰੋਵਤ ਮਰਤ ਕੇਤੇ ਜਲ ਮੈਂ ਡੁੱਬਤ ਕੇਤੇ ਆਗ ਮੈਂ ਜਰਤ ਹੈ ਕੇਤੇ ਗੰਗ ਵਾਸੀ ਕੇਤੇ ਮਦੀਨਾ ਮੱਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਕੇਤਕ ਉਦਾਸੀ ਕੇ ਭਰਮਾਈ ਫਿਰਤ ਹੈ ਕਰਵਤ ਸਹਤ ਕੇਤੇ ਭੂਮ ਮੈਂ ਗੜਤ ਕੇਤੇ ਸੁਹਾ ਪੇ ਚੜਤ ਕੇਤੇ ਦੁੱਖ ਭਰਤ ਹੈ ਗੈਨ ਮੈਂ ਉੜਤ ਕੇਤੇ ਜਲ ਮੈਂ ਰਹਤ ਕੇਤੇ ਗਿਆਨ ਕੇ ਭੀਨ ਜਗ ਜਾਰੀ ਮਰਤ ਹੈ ਸੋਧ ਹਾਰੇ ਦੇਵਤਾ ਵਿਰੋਧ ਹਾਰੇ ਦਾਨੋ ਬੜੇ ਬੋਧ ਹਾਰੇ ਬੋਧਕ ਪ੍ਰਬੋਧ ਹਾਰੇ ਜਾਪਸੀ ਘਸ ਹਾਰੇ ਚੰਦਨ ਲਗਾਏ ਹਾਰੇ ਚੋਆ ਚਾਰ ਪੂਜ ਹਾਰੇ ਪਾਹਨ ਚੜਾਏ ਹਾਰੇ ਲਾਪਸੀ ਗਾਂ ਹਾਰੇ ਗੋਰਨ ਮਨਾਏ ਹਾਰੇ ਮੜੀ ਮੱਟ ਲੀਪ ਹਾਰੇ ਭੀਤਨ ਲਗਾਏ ਹਾਰੇ ਛਾਪਸੀ ਗਾਏ ਹਰੇ ਗੰਧਰਵ ਵਜਾਏ ਹਰੇ ਕਿੰਨਰ ਸਭ ਪਚ ਹਰੇ ਪੰਡਿਤ ਤਪੰਤ ਹਰੇ ਤਾਪਸੀ ਸੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਦ ਛੰਦ ਨਾ ਰਾਗੰਗ ਨਾ ਰੰਗੰਗ ਨਾ ਰੂਪੰਗ ਨਾ ਰੇਖੰਗ ਨਾ ਮੋਹੰਗ ਨਾ ਗ੍ਰੋਹੰਗ ਨਾ ਦ੍ਰੋਹੰਗ ਨਾ ਦਵੈਖੰਗ ਨਾ ਕਰਮੰਗ ਨਾ ਭਰਮੰਗ ਨਾ ਜਨਮੰਗ ਨਾ ਜਾਤੰਗ ਨਾ ਮਿੱਤਰੰਗ ਨਾ ਸਤਰੰਗ ਨਾ ਪਿਤਰੰਗ ਨਾ ਮਾਤੰਗ ਨਾ ਨੇਹੰਗ ਨਾ ਗੇਹੰਗ ਨਾ ਕਾਮੰਗ ਨਾ ਧਾਮੰਗ ਨਾ ਪੁੱਤਰੰਗ ਨਾ ਮਿੱਤਰੰਗ ਨਾ ਸਤਰੰਗ ਨਾ ਭਾਮੰਗ ਅਲੇਖੰਗ ਅਭੇਖੰਗ ਅਜੋਨੀ ਸਰੂਪੰਗ ਸਦਾ ਸਿੱਧਤਾ ਬੁੱਧਤਾ ਬਿਰਧ ਰੂਪੰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਨ ਜਾਈ ਕਛੂ ਰੂਪ ਰੇਖੰਗ ਕਹਾਂ ਬਾਸਤਾ ਕੋ ਫਿਰੇ ਕੌਣ ਭੇਖੰਗ ਕਹਾਂ ਨਾਮਤਾ ਕੋ ਕਹਾਂ ਕਹਿ ਕਹਾਵੈ ਕਹਾਂ ਕਹਿ ਬਖਾਨੋ ਕਹਿ ਮੈਂ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਰੋਗੰਗ ਨਾ ਸੋਗੰਗ ਨਾ ਮੋਹੰਗ ਨਾ ਮਾਤੰਗ ਨਾ ਕਰਮੰਗ ਨਾ ਭਰਮੰਗ ਨਾ ਜਨਮੰਗ ਨਾ ਜਾਤੰਗ ਅਦਵੈਖੰਗ ਅਭੇਖੰਗ ਅਜੋਨੀ ਸਰੂਪੇ ਨਮੋ ਏਕ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਏਕ ਰੂਪੇ ਪਰੇ ਅੰਗ ਪਰਾ ਪਰਮ ਪ੍ਰਗਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਅਛੇਦੰਗ ਅਛੇ ਆਦ ਅਦਵੈ ਅਵਿਨਾਸੀ ਨਾ ਜਾਤੰਗ ਨਾ ਪਾਤੰਗ ਨਾ ਰੂਪੰਗ ਨਾ ਰੰਗੇ ਨਮੋ ਆਦ ਫੰਗੇ ਨਮੋ ਆਦ ਫੰਗੇ ਕਿਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੇ ਕੀਟ ਕੋਟੈ ਉਪਾਏ ਸਾਰੇ ਗੜੇ ਫਿਰ ਮੇਟੇ ਬਨਾਏ ਅਗਾਧੇ ਅਭੈ ਆਦ ਅਦਵੈ ਅਵਿਨਾਸੀ ਪਰੇ ਅੰਗ ਪਰਾ ਪਰਮ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਨਾ ਆਦੰਗ ਨਾ ਵਿਆਦੰਗ ਅਗਾਧੰਗ ਸਰੂਪੇ ਅਖੰਡਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਦ ਅੱਛੈ ਵਿਭੂਤੇ ਨਾ ਜਨਮੰਗ ਨਾ ਮਰਨੰਗ ਨਾ ਵਰਨੰਗ ਨਾ ਵਿਆਧੇ ਅਖੰਡੇ ਪ੍ਰਚੰਡੇ ਅਦੰਡੇ ਅਸਾਧੇ ਨਾ ਨੇਹੰਗ ਨਾ ਗੇਹੰਗ ਸਨੇਹੰਗ ਸਨਾਥੇ ਉਦੰਡੇ ਅਮੰਡੇ ਪ੍ਰਚੰਡੇ ਬ੍ਰਹਮਾਥੇ ਨਾ ਜਾਤੇ ਨਾ ਪਾਤੇ ਨਾ ਸਤਰੇ ਨਾ ਮਿੱਤਰੇ ਸੋ ਭੂਤੇ ਭਵਿਕੇ ਭਵਾਨੇ ਅਚਿਤਰੇ
ना रायंग ना रंकंग ना रूपंग ना रेखंग ना लोभंग ना शोभंग अभूतंग अभेखंग ना सतरंग ना मित्रंग ना नेहंग ना गेहंग सदैवंग सदा सर्व सर्वत्र सनेहंग ना कामंग ना क्रोधंग ना लोभंग ना मोहंग अजोनी अक्षय आदद्वय अजोहंग ना जन्मंग ना मरणंग ना वर्णंग ना व्याधंग ना रोगंग ना शोकंग अभय निर्विखादंग अछेदंग अभेदंग अकर्मंग अकालंग अखंडंग अभंडंग प्रचंडंग अपालंग ना तातंग ना मातंग ना जातंग ना कायंग ना नेहंग ना गेहंग ना भर्मंग ना भायंग ना रूपंग ना भूपंग ना कायंग ना कर्मंग ना त्रासंग ना प्रासंग ना भेदंग ना भर्मंग सदैवंग सदा सिद्ध बिरदंग स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे निरुक्तंग प्रभा आद अनुक्तंग प्रतापे अयुक्तंग अक्षय आद अविक्ते अथापे विभुक्तंग अक्षय आद अक्षय स्वरूपे नमो एक रूपे ना नेहंग ना गेहंग ना शोकंग ना साकंग परे अंग पवित्रंग पुनीतंग अताकंग ना जातंग ना पातंग ना मित्रंग ना मंत्रे नमो एक तंत्रे ना धर्मंग ना भर्मंग ना सर्मंग ना साके ना भर्मंग ना चर्मंग ना कर्मंग ना बाके ना सतरंग ना मित्रंग ना पुत्रंग स्वरूपे नमो आज रूपे कहूं कांज के मन के भरम भूले कहूं रंग के राज के धर्म अलूले कहूं देश के भेष के धर्म धामे कहूं राज के साज के बाज तांबे कहूं अक्षर के पक्षर के से साधे कहूं सिद्ध के बुद्ध के बृदला धे कहूं अंग के रंग के संग देखे कहूं जंग के रंग पेखे कहूं धर्म के कर्म के हरम जाने कहूं धर्म के कर्म के भरम माने कहूं चार चेष्टा कहूं चित्र रूपंग कहूं परम प्रज्ञा कहूं सर्व भूपंग कहूं ने गृहंग कहूं देव दोखंग कहूं औखदी रोग के सोग सोखंग कहूं देव विद्या कहूं दैत बानी कहूं जल गद्रव किन्नर कहानी कहूं राजसी सादगी तामसी हो कहूं जोग विद्या धरे तापसी हो कहूं रोग रहता कहूं जोग युक्तं कहूं भूम की भुगत में भरम भुगतं कहूं देव कन्या कहूं दानवी हो कहूं जज विद्या धरे मानवी हो कहूं राजसी हो कहूं राज कन्या कहूं श्रेष्ठ के प्रेष्ठ के रेष्ठ कन्या कहूं वेद विद्या कहूं वेमवाणी कहूं को की काव कथा कहानी कहूं अद्र सारंग कहूं भद्र रूपं कहूं मद्र बानी कहूं छद्र स्वरूपं कहूं वेद विद्या कहूं काव रूपं कहूं चेष्टा चार चित्रंग स्वरूपं कहूं परम पुराण को पार पावे कहूं बैठ पुराण के गीत गावे कहूं शोध सेकं कहूं ब्रह्म धर्मं कहूं वृद्ध अवस्था कहूं बाल कर्मं कहूं ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूं ने देहं कहूं त्याग गृहं कहूं योग भोगं कहूं रोग रागं कहूं रोग हर्ता कहूं भोग त्यागं कहूं राज साजं कहूं राज रीतं कहूं पूर्ण प्रज्ञा कहूं परम प्रीतं कहूं आरवी तोर की पारसी हो कहूं पहलवी पस्तवी संस्कृति हो कहूं देद भाग्या कहूं देववाणी कहूं राज विद्या कहूं राजधानी कहूं मंत्र विद्या कहूं तंत्र सारंग कहूं जंत्र रीतं कहूं शास्त्र धारं कहूं होम पूजा कहूं देव अर्चा कहूं पिंगला चारणी गीत चर्चा कहूं बीन विद्या कहूं गान गीतं कहूं मलेज भाग्या कहूं वेद रीतं कहूं नृत विद्या कहूं नागवाणी कहूं गारुड़ गुण कथा कहानी कहूं अक्षरा पक्षरा मक्षरा हो कहूं वीर विद्या भूतं प्रभा हो कहूं छल छाला धरे छत्र धारी कहूं राज साजंग धीराजाधिकारी नमो नाथ पूरे सदा सिद्ध दाता अछेदी अक्षय आद अद्वै विधाता न त्रस्तंग न ग्रस्तंग समस्तंग स्वरूपे नमस्तंग नमस्तंग तुअस्तंग अभूते तो प्रसाद पादड़ी छंद अभ्यक्त तेज अनुभव प्रकाश अच्छा सुरपद में अनास अनतुट तेज अनखुट भंडार दाता दुरंग सर्वंग प्रकार अनुभूत तेज अनुच्छेद काल करता सदी हरता असनाथ आसन डोल अनुभूत कर्म दाता दयाल अनुभूत धर्म जय सत्र मित्र नहीं जन्म ज्या जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मान जय कर्म भ्रम नहीं धर्म ज्ञान जय ने गे ने व्योध पान जय जात पान नहीं सत्र मित्र जय ने गे नेह चहन क्षेत्र जय रंग रूप नहीं राग रेख जय जन्म ज्ञान नहीं भ्रम भेक जय करम भरम नहीं जात पार नहीं ने गे नहीं पितृ मार जय नाम थाम नहीं भरग ब्या जय रोग शोक नहीं सत्र सार जय त्रास वास नहीं दे ना जय आद अंत नहीं रूप राज जय रोग शोक नहीं जोग जुगत जय त्रास आद नहीं भूम भुगत जय काल ब्याल कट्यो न अंग अक्षय स्वरूप अक्षय अभंग जय नेत नेत उचरंत बे जय अलग रूप कथत कते जय अलग रूप आसन अडोल जय अमित तेज अक्षय अतोल जय ध्यान काज मुंजन अनंत कई कलप जोग साधन दुरंत तन सीध घाम बरखा सहंत कई कलप एक आसन बितंत
कई जतन जोग विद्या विचार साधन तद पावत न पार कई उर्द बादेशन भ्रमंत कई उर्द मद पावक झुलंत कई सिमरे शास्त्र उचरंत वेद कई कोव काव कथन कते कई अगन होत्र कई पौन हार कई करत को नृत को आहार कई करत साग पे पत्र भच्छ नहीं तदब दे होवत प्रत्यक्ष कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूं वेद रीत जग आदि कर्म कहूं अगन होत्र कहूं तीर धर्म कई देद देद भाका रटन कई देद देद विद्या पढ़ंत कई करत भांत भांतन विचार नहीं नायक तास पायत न पार कई तीरथ तीरथ भरमसो भरम कई अगन होत्र कई देव करम कई करत वीर विद्या विचार नहीं तदम तास पायत न पार कहूं राजरीत कहूं जोग धर्म कई सिमरे शास्त्र उत्रसो करम कहूं नीली आदि कर्म हस्तदान कहूं अश्वमेध मको बखान कहूं करत ब्रह्म विद्या विचार कहूं जोग रीत कहूं वृद्ध चार कहूं करत जज गंधर्व गान कहूं धूप दीप कहूं अर्घ दान कहूं पितृ कर्म कहूं वेद रीत कहूं नृत्य नाच कहूं गान गीत कहूं करत शास्त्र सिमरित उचार कही भजत पग एक पग निराधार कई ने दे कई गे वा कई भ्रम दे देसन उदार कई जल निवास कई अगन ताप कई जपत उर्द लटकंत जाप कई जपत जो कल्पंग प्रजंत नहीं तदा तास पायत न अंत कई करत कोड विद्या विचार नहीं तदब देश देखे मुरार बिन भगत सगत नहीं परत पान बो करत होमर जग दान बिन एक नाम एक चित्त लीन भोगटो सर्व धर्माभिहीन तो प्रसाद तोटक छंद जय जम्पो जुगण जुओ जुवंग भय कंपो मेर पयाल भुवंग तब ताप सर्व जलेरु थलंग धन धन उचरत इंद्र कुमेर बलंग अन खेद सरु अभेद अभियंग अन खंड अभूत अछेद अछियंग अन काल अपाल दियाल अस्वंग जय ठटियंग वेर अकाश भुवंग अन खंड अमंड प्रचंड रंग जय दक्षियंग देव अदेव वरंग सब कीनी दीन जमीन जमा जय रचंग सरम मकीन मका जय रागना रूपना रेग रुखंग जय तापना सापना सोग सुखंग जय रोगना सोगना भोग भुवंग जय खेदना भेदना छेद छयंग जय जातना पातना मात पितंग जय रचंग छत्री छत्र छितंग जय रागना रेखना रोग भणंग जय द्वैखना दागना दोख गणंग जय अंड ते ब्रह्मंड रचियो द चार करी नौ खंड सचियो रज तामस तेज तेज कियो अनुभव पद आप प्रचंड लियो सिय सिंदर बिंद नगिंद नगंग श्रिय जाच गंधर्व भणिंद भुजंग रस देव देव भेव नरंग नरपाल निरपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंडज सेतज उद भुजंग किय देव देव सराज पितंग अनखंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जात न पात न जोतंग जय तात न मात न भ्रात सुतंग जय रोग न शोक न भोग भुवंग जय जम्पय किन्नर जच जुवंग नर नार नपुंसक जाय किय गण किन्नर जज भुजंग दिए गज बाज रथाधिक पांद गण भव भूत भेग भावभूत भावभूत भवेक भवान तुवंग जय अंडज सेत जय रजन भूम काल पताल जलंग रज पावक पान प्रचंड बलि बन जास के फल फूल कली भू मेर का निवास हितंग रज रोज का द चंद्र मृतंग दुत चंद दिनी सा दीप दई जय पावक पान प्रचंड बई जय खंड अखंड प्रचंड किए जय छत्र उपाय छपाय दिए जय लो छत्र चार रचे नर गंधर्व देव अदेव सचे अन धूत अभूत अशूद मदंग अन गाद अभ्याद अनाद गतंग अन खेद अभेद अछेद नरंग जय चार छत्र चक्र फिरंग जय राग ना रंग ना रेग रुखंग जय शोक ना भोग ना जोग जुगंग भो भंजन गंजन आश्रंग जय बंदर देव देव नरंग गण किन्नर जच भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभा अन गंज मृतंग जय पार ना पावत पूर मतंग अन खंड सरुव दंड प्रभा जय जम्पत वेद पुराण सभा जय वेद कतेब अनंत कह जय भूत अभूत न भेद लह जय वेद पुराण कतेब जपै सो सिंध अधो मुख ताप तपै कई कल्पन लो तब ताप करे नहीं नह कृपा निध पान परे जय फोकर धर्म समय तज है चित कृपा निध को जप है तेव या भव सागर कोतर है भव भूलना दे पुनर्धर है एक नाम बिना ने कोड वृति वेद उचार सास सुति जो वारस के चस के रस है तेव भूलना काल फंदा फस है सब साध नाराज छंद अगंज आद देव है भंज भंज जानिए भूत भूत है सदा गंज गंज मानिए अदेव देव है सदा भेव भेव नाथ है समस्त वृद्ध दा सदीव सर्व सात है अनाथ नाथ नाथ है भंज भंज है सदा गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्ध दा
अनूप रूप स्वरूप है, अछेद तेज मानी है, सदैव सिद्ध शुद्धता प्रताप पत्र जानी है, न राग रंग रूप है, न रोग राग रेख है, अधोक दाग तक है, भूता भ्रम भेक है, न तात्मात जात है, न पाच्यन भरण है, अधेक अशेक भेक है, सदयु विश्व भरण है, विश्वम्बर में सनात है, विशेक विश्व भरण है, जमी जमान के विखय सदयु करम भरम है, अद्वैक है, अभेक है, अलेक न जानिए, सदयु सर्व ठौर में विशेक अन मानिए, न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई, पुराण अकुराण नेत नेत क बतावई, न कर्म में न धर्म में न भ्रम में बताइए, अगंज आदेव है, कहो सो कैस पाइए, जिमी जमान के विखय समस्त एक ज्योत है, न घाट है, न बाढ़ है, न घाट फाड़ होत है, न हान है, न बान है, समान रूप जानिए, मकीनो मकान प्रमाण तेज मानिए, न देह है, न गेह है, न जात है, न पात है, न मंत्र है, न मित्र है, न तात है, न मात है, न अंग है, न रंग है, न संग है, न साध है, न धोग है, न दाग है, न द्वैग है, न देह है, न सिंह है, न स्यार है, न राव है, न रंग है, न मान है, न मौद है, न साक है, न संक है, न जज है, न गंधर्व है, न नर है, न नार है, न चोर है, न शाह है, न शाको कुमार है, न नेह है, न गेह है, न देह को बनाव है, न छल है, न छत्र है, न छल को मिलाव है, न जंत्र है, न मंत्र है, न तंत्र को स्वरूप है, न राग है, न रंग है, न रेख है, न रूप है, न जंत्र है, न मंत्र है, न तंत्र को बनाव है, न छल है, न छिद्र है, न छाया को मिलाव है, न राग है, न रंग है, न रूप है, न रेख है, न कर्म है, न धर्म है, जन्म है, अभेक है, न तात है, न मात है, काल खंड रूप है, छेद है, भेद है, न रंग है, न भूप है, पर है, पवित्र है, पुनीत है, पुराण है, अगंज है, भंज है, करीम है, कुरान है, अकाल है, अपाल है, ख्याल है, अखंड है, न रोग है, न शोक है, न भेद है, न भंड है, न अंग है, न रंग है, न संग है, न सात है, प्रिया है, पवित्र है, पुनीत है, प्रमात है, न सीत है, न सोच है, न घ्राम है, न घाम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दैत है, न नर को स्वरूप है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र की विभूत है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न द्वैग है, न भेक है, न दुई है, न द्रोह है, न काल है, न बाल है, सदयु दयाल रूप है, अगंज है, भंज है, अभर्म है, अभूत है, अछेद छेद है, सदा गंज गंज गंध है, भूत अभेक है, बलिया रूप राग रंग है, न द्वैक है, न भेक है, न काम क्रोध कर्म है, न जात है, न पात है, न चित्र चयन वरण है, व्यंत है, अनंत जानिए, भूम अभिज है, सदा छेद तेज मानिए, न आद है, न व्याद है, अगाध रूप लेखिए, अधोक दाग तक है, अच्छे प्रताप देखिए, न कर्म है, न भ्रम है, न धर्म को प्रभाव है, न जंत्र है, न तंत्र है, न मंत्र को रलाव है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र को स्वरूप है, भंग है, अनंग है, अगंजसी विभूत है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ मोह कार है, न आद है, न गाद है, न व्याद को विचार है, न रंग राग रूप है, न रूप रेख रार है, न हाव है, न भाव है, न दाव को प्रकार है, गजाधपि न राधपि करंत सेव है, सदा सितस्पति तपस्पति वनस्पति जपस सदा, अगस्त आत जे बड़े तपस्पति विशेखी है, बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ पेखी है, अगाध आदेव की अनाद बात मानिए, न जात पात्र मंत्र मित्र शत्रु सने जानिए, सदयु सर्व लोक के कृपाल ख्याल में रह, तुरंत द्रोह देख आनंद भान सोध है, तो प्रसाद रुआमल छंद रूप रागना रेख रंगना जन्म मरण भीन, आदनाद अगाध वृक्षो धर्म करम प्रवीण, जंत्र मंत्र न तंत्र जागो आद पुरग पार, हथ खीड विखय बस सब ठौर में निर्धार, जात पात न तात जागो मंत्र मात न मित्र, सर्व ठौर विखय रम्यो जय चक्र चयन न चित्र, आद देवदार मुरद अगार नाद अनंत, आद अंत न जानी अभिखा देव दुरंत, देव भेव न जानी जे मरम भेद कतेब, सनक औ सनकेश नंदन पावही न हसेब, जच किन्नर मच्छ मानस मुर्ग उर्ग पार, नेत नेत पुकारी शिव सक्र अमुख चार, सर्व सपद पतार के तर जाप ही जय जाप, आदेव गा तेज नाद मुरद ताप, जंत्र मंत्र न आवई कर तंत्र मंत्र न कीन, सर्व ठौर रहो विराज धीरा जा राज प्रवीण, जच गंधर्व देव दान न ब्रह्म क्षत्रिय माहे, वैष्णव के विखे विराजे सूत्र विवा नाहे, गुड़ गौड़ न भील भीकर भ्रम शेख स्वरूप, रात दिवस न मध्य उर्द न भूम काश अनूप, जात जन्म न काल कर्म न धर्म कर्म प्रभिहीन, तीर जात न देव पूजा गोर के न अधीन, सर्व सपत पतार के तर जानिए जय ज्योत, शेष नाम सहस्पन्न नेद पूरन होत,
सो सोध हटे सब सुर विरोध दानो सरब गाय गाय हटे गदरब गवाय किन्नर गरब पढ़त पढ़त थके महाकवि गणत गाढ़ अनंत हार हार कहो सबो मिल नाम नाम तुरंत भेद भेद न पायो लख्यो न सेव कतेब देव दानो मूढ़ मानो जच न जाने जेब भूत भव भवान भूपद आदनाद नाथ अगन बाय जले थले में सर्व ठौर निवास दे गे ने सने अभेह नाद जीत सर्व गंजन सर्व भंजन सर्व ते अनभीत सर्व करता सर्व हकर्ता सर्व दयालत भेक सर्व करता सर्व हरता सर्व दयालत भेक चक्र चेना बरंजा को जात पात ना भेख रूप रेखना रंग जागो राग रूप ना रंग सर्व लायक सर्व घायक सर्व ते अनभंग सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व को प्रतपाल दीन बंद आल स्वामी आ देव पाल दीन बंद प्रवीण श्री पर सर्व को करतार बरन चेन चक्र जाको चक्र छेन कार जात पात ना गोत्र गाता रूप रेखना बरन सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व हो को भरन दुष्ट गंजन शत्रु पंजन परम पुरक प्रमाथ दुष्ट हरना श्रेष्ठ करता जगत में जय गाथ भूत भव भवेग भवान प्रमाण देव अगंज आद अंत नाथ श्रीपद परम पुरक अभंज धर्म के अनकरम जय दकीन तौर प्रसार देव देव गंधर्व किन्नर माच्छ काच्छ अपार भूम का जले थले में मानिए जय नाम दुष्ट हरता पुष्ट करता श्रेष्ठ का हरता काम दुष्ट हरना श्रेष्ठ करना दयाल लाल गोविंद मित्र पालक शत्रु घालक दीन दयाल मुकंद अघाट अंडन दुष्ट खंडन काल हुके काल दुष्ट हरण पुष्ट करणंग सर्व के प्रतपाल सर्व करता सर्व हरता सर्व के अनकाम सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निज भाव सर्व भुक्ता सर्व जुगता सर्व करम प्रवीण सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व करम अधीन सर्व सिमृतन सर्व शास्त्र सर्व वेद विचार दुष्ट हरता विश्वभरता आद्रूप अपार दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आदेव अखंड भूम का जले थले में जप जाप अमंड श्रेष्ठार विचार जानिए सब विचार आदेव पार श्रीपद दुष्ट पुष्ट प्रहार अन्नदाता ज्ञान ज्ञाता श्रम मान महेंद्र वेद व्याज करे कई दिन कोट इंद्र उपेंद्र जन्म जाता कर्म ज्ञाता धर्म चार विचार वेद भेव न पावे से रुद्र मुखचार कोट इंद्र उपेंद्र ब्यास सन सनत कुमार गाय गाय थके सब गुण चक्रत भे मुखचार आद अंत न मध जागो भूत भगवान सत द्वापर तृतीया कलयुग छत्र काल प्रधान ध्याय ध्याय थके महामुन गाय गंधर्व अपार हार हार थके समय नहीं पाइय तह पार नारद आदि वेद व्यासक मुन महान अनंत ध्याय ध्याय थके समय कर कोट कष्ट दुरंत गाय गाय थके गंधर्व नाज अपच्छर अपार सो सो थके महासुर पायो नह पार तो प्रसाद दोहरा एक समय श्री आत्मा

सकल विस्तार दोहरा। कह जी तब का मरण है कवन सुर कह नर को सुगड़ा को मूर्ता कहा तरक औ तरक दोहरा। को निंदा जस है कवन कवन पाप का धर्म कवन जो को भोग है कवन धर्म अपकर्म दोहरा। कहो ससम का सो कह दम को कहा कहंत को सूरा दाता कवन कहो तंत को मंत दोहरा। कहा रंग राजा कवन हरक शोक है कवन को रोगी रागी कवन कहो तत मोह तवन दोहरा। कवन रिष्ट को पुष्ट है कहा श्रेष्ठ को विचार कवन श्रेष्ठ को भ्रष्ट है कहो सकल विस्तार दोहरा। कहा कर्म को क्रम है कहा भ्रम को नाश कहा चितन की चेष्टा कहा छेद प्रकाश दोहरा। कहा नेम संयम कहा कहा ज्ञान ज्ञान को रोगी शोकी कवन कहा धर्म की हान दोहरा। को सूरा सुंदर कवन

दुर्जंदल लंडन असुर विहंडन दोष्ट निकंदन आद ब्रते चचरासुर मारण पदे धारण नरक निवारण गूढ़ गते अक्षय अखंडे तेज दंडे खंड दंडे अलख मते जय जय होसी मय का सुर मर्दन राम कपर्दन छत्र छिते आसुरी विहंडन दोष्ट निकंदन पुष्ट दंडन रूपते चंडासुर चंडन बंड विमंड विहंडन धूम्र विनंसन महक मथे दानो प्रहारण नरक निवारण अधम उधारण उर्द अधे जय जय होसी मय का सुर मर्दन राम कपर्दन आदृते डावरू डबंके बबर बबंके भुजा फरंके तेज बरंग लंकुड़िया फादे आयुध बांधे सैन में मर्दन काल सुरंग अष्टाय चमके भूकण दमके असि झमके फुंक फनंग जय जय होसी मय का सुर मर्दन राम कपर्दन दैत जिनंग चंडा सुर चंडन मुंड में मुंडन खंड अखंडन खून खिते दामनी दमंकन धुजा फरंकन फणी फंकारण जो जिते सरदार बिबरखन दोष्ट प्रकरखन पोष्ट प्रहरखन दोष्ट मथे जय जय होसी मय कासुर मर्दन भूम का तल उर्द अधे दामनी प्रहासन सोचा निवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गुड़ गते रक्तासुर आचन जोन प्रमाचन हृदय नाचन धर्म वृते सुरोणत अचिंती अनल वेंती जोग जयंती खड़ग धरे जय जय होसी मय कासुर मर्दन पाप विनाशन धर्म करे अगोग निवारण दोष प्रजारण श्रेष्ठ उबारण शोध मते फणियर फुंकारण बाग बकारण शत प्रहारण साध मते सैती सनाहन अष्ट प्रवाहन बोल निवाहन तेज तुलंग जय जय होसी मय कासुर मर्दन भूम काल पताल जलंग चाचर चमकारण चिचुर हरण धूम दुकारण द्रव मथे दाढ़ी प्रदंते जोग जयंते मनोज मथंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंद्र प्रकाशन सूरज प्रतेजन अष्ट भुजे जय जय होसी मय कासुर मर्दन भरम विनाशन धर्म धुजे घुंगुर घमंकन शत्र झमंकन फणियर फुंकारण धर्म धुजे अष्टाड प्रहासन श्रेष्ठ निवासन दोष्ट प्रदासन चक्र गते केसरी प्रवाहे सोच सनाये अगमताये एक वृते जय जय होसी मय कासुर मर्दन आद कुमार अगाध प्रते सुर नर मुन बंदन दोष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन मृत मथे कावरु कुमारे अधम उदारे नरक निवारे आद कथे किंगणी प्रसोहन स्वर नर मोहन सिंगारो बितल तले जय जय होसी सब ठौर निवासन वाय पताल काश अनले संकटी निवारण अधम उदारण तेज प्रकरकण तुंद तबे दुग दोग दहंती ज्वाल जयंती आद नाद गाद अच्छे सुधता समर्पण तरक वितरकण तपत प्रतापण जपत जीवे जय जय होसी छात्र प्रकरखण आद अनिल अगाद अभे चंचला चखेंगी अलग भुजंगी तुंद तरंगण तेज सरे कर कसा कुठारे नरक निवारे अधम उधारे तूर भुजे दामनी दमनके के हरलंके आद अतंके क्रूर कथे जय जय होसी रक्तासुर खंडन सोम्ब चक्र निसोम्ब मथे बारज विलोचन वृतन विमोचन सोज विसोचन कौज कसे दामनी प्रहासे सुखसरनासे सुभृत सुवासे दृष्ट ग्रसे चंचला ब्रंगी वेद प्रसंगी तेज तुरंगी खंड सुरंग जय जय होसी मय कासुर मर्दन आद अनाद गाद उर्धंग घंट का विराज रुणजन बाजय भ्रम भय बाजय सुनत सुरंग कोकल सुन लाजय किल्विक भाजय सुख पराजय मद उरंग दुर्जन दल दजय मंथन रिजय सबैना पजय रोरण जय जय होसी मय कासुर मर्दन चंड चकर्तन आद गुरंग चाचरी प्रजोधन दोष्ट विरोधन रोष अरोधन क्रूर वृते धूमराज विजुंसन प्रलय प्रजुंसन जाग विध्वंसन सोत मते जालपा जयंती सत्र मथंती दोष प्रदाहन गाढ़ मते जय जय होसी मय कासुर मर्दन आद जुगाद अगाध गते खत्रियाण खतंगी अभय अभंगी आद अनंगी अगाध गते ब्रड लाज बिहंडन चक्षुर दंडन तेज प्रचंडन आद वृते सुर नर प्रद पारण पदे धारण दोष निवारण दोग हरे जय जय होसी मय कासुर मर्दन विश्व विदंसन श्रेष्ठ करे दामनी प्रकाशे उन्नत उन्तन्ना से ज्योत प्रकाशे अतुल बले दानवी प्रकरखण सर्वर वरखण दोष प्रधरखण बितल तले अष्टाल बाण बोली बाण संत पनाहण गूढ़ गते जय जय होसी मय कासुर मर्दन आद अनाद गाद वृते दुग दो प्रवचन सेवक रक्षण संत प्रतक्षण शुद्ध सरे सारंग सनाय दोष्ट प्रदाय अर्दल गाहे दो घरे गंजन गुमाने अतुल प्रमाने संत जमाने आद अंते जय जय होसी मय कासुर मर्दन साध प्रदक्षण दोष्ट हंते कारण करीली गर्भ गहिली जो जतीली तुंद मते अष्टाय चमकन झमकण दामिन दमकण आद वृते डुगडुगी दमंक बाग बवंक भुजा फरंक सुध गते जय जय होसी मय कासुर मर्दन आज गाद नाद मते
चचरासुर मारन नरक निवारण पद सारण एक भटे पापान बिहंडन दोष प्रचंडन खंड खंडन काल कट्टे चंद्रानन चार नरक निवारे पद धारे मुंड मथे जय जय होसी मै कासुर मर्दन धूम्र विदंसन आदि कथे रक्तासुर मर्दन चंड चक्रदन दानो अर्दन बिडाल बधे सरदार बिबरखन दुर्जन धरकन अतुल अमर खन धर्म ध्वजे धूमराज विदंसन सुरोण चुनसन सोम निसोम्ब निपात निसोम्ब मथे जय जय होसी मै कासुर मर्दन आद अनिल अगाद कथे तो प्रसाद पादड़ी छंद तुम कहो देव सर्वंग विचार जिम कियो आप करते प्रसार जदब भूतन भय अनंत कहो तो कहो जताम त्रैण तंत करता करीम कादर कृपाल भय भूतन भय दयाल दाता दुरंग दुख दो नेत नेत सब भेद कहत कह ऊंच नीच की नो बनाओ सब वार पार जाको प्रभाओ सब जीव जंत जानंत जाए मन मूड क्यों ना सेवंत ताहे कई मूड पत्र पूजा करंत कई सिद्ध सा सूरज सिवंत कई पलट सूरज सिद्धा कराए प्रभ एक रूप द्वय कह लखाए अनछिज तेज अन भय प्रकाश दाता दुरंग अद्वै अनाथ सब रोग शोक ते रहत रूप अन भय काल अच्छा स्वरूप करुणा निधान कामल कृपाल दुख दोग हर दाता दयाल अंजन विहीन अन भंजना जल थल प्रभा सर्वत्र साथ जय जात पार नहीं भेद भरम जय रंग रूप नहीं एक धर्म जय शत्रु मित्र दो एक सार अच्छा सर्व अब चल पार जानी ना जय जय रूप रेख बास तास कह कौन भेख कह नाम तास है कवन जा जय शत्रु मित्र नहीं पुत्र भ्रात करुणा निधान कारण स्वरूप जय चक्र चैन रंग रूप जय खेत भेद नहीं कर्म काल सब जीव जंत की करत पाल उर्धंग विराज सिद्धंग स्वरूप बुद्धंग पाल युद्धंग अनूप जय रूप रेख नहीं रंग राग अनछज तेज अनभिज अदाग जल थल मही बंतन दुरंत जय नेत नेर निर्दिन उचरंत पायो न जाय जय पैर पार दीनान दोग दहता उदार कई कोट इंद्र जय पान हार कई कोट रुद्रजुआ द्वार कई वेद व्यास ब्रह्मा अनंत जय नेत नेर निर्दिन उचरंत तो प्रसाद सवये दीनन की व्रत पाल करे ने संत वार गनी मन गारे पज पशु नग नाग नरादि सर्व समय सबको व्रत पारे भोकत है जल मै थल मै पल मै कल के नहीं करम बिचारे दीन दयाल दयानि दोखन देखत है पर देत न हारे दाहत है दू दोखन को दल दुजन के पल में दंडारे खंड अखंड प्रचंड पहारन पूरन प्रेम की प्रिय संभारे पार न पाए सके पदमापद भेद कते भेद उचारे रोजी हिराज लोक राजिक रोग रोहन की रोजी न टारे कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भवे के भवान बनाए देव देव खपे हमे ना भेव लगे भ्रम सिंह भरमाए वेद पुराण कतेव कुरान हसेब थके कर हाथ न आए पूरन प्रेम प्रभाव बिना पत स्यों केन श्री पद्मापद पाए आद अनंत काद अधवेक सो भूत भवे न भवान अभय है अंत विहीन अनातम आव अदाग अदौद्र अछेद्र अचय है लोगन के करता हरता जल में थल में भरता प्रव है दीन दयाल दया कर श्रीपत सुंदर श्रीपद महापत ए है कामना क्रोध ना लोभ ना मोह ना रोग ना सोग ना भोग ना भय है देव ही सने सबोतन नेह व्रक्त अगह चह है जान को दे ता जान को दे जमीन को दे जमान को दे है काहे को डोलत है तुमरी सुसुंदर श्री पद्मावत लय है रोगंते अर्थोगंते जल जोगंते भव भांत बचावे शत्रु अनेक चलावत घात तहु तन एक ना लागन पावे राखत है अपनो कर दय कर पाप संभूह न भेटन पावे और की बात कहाँ कह तो सो पेट ही के पट बीच बचावे जज भुजंग सो दानव देव अभे तुम्हें सब ही कर ध्यावे भूम का पताल सातल जज भुजंग सब ऐसे न्यावे पाए सके नी पार प्रभाहु को नेत ही नेत वेद बतावे खोज सके सभी कुजिया सुर हार परे रात न आवे नारद से चतर आनंद से रुम नारी से सब हुमिल गायो वेद के देव ना भेद रखियो सब हार परे हरात न आयो पाए सके नी पार उमाप से सनात सनंतन ध्यायो ध्यान धरो तह को मन में जय को मितोज सब जग छायो वेद पुराण के देव गुरा भेद निर्पाण सब बज हारे भेद ना पाए सके अन भेद को खेद ध्यान छेद पुकारे राग ना रूप ना रेख ना रंग ना साग ना सोग ना संग तिहारे
आदय अनाद अगाध अभेक अदभेक जपियो तिन ही कुल तारे तीरथ गोट की स्नान दिए वो दान महाव्रत धारे देश प्रिय होकर भेष तपोधन के धरे ना मिले हर प्यारे आसन कोट करे अष्टांग धरे बो न्यास करे मुकारे दीन दयाल काल भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे तो प्रसाद कबित अत्र के चलैया छत छत्र के धरिया छत्र धारियों के छलैया मा सतरन के साल हैं दान के दिवैया महमान के बड़े अवसान के दिवैया हैं कटैया जम जाल हैं जोध के जितैया विरोध के मिटैया मा बुद्ध के दिवैया महमान हु के मान हैं ज्ञानु के गाता महा बुद्धता के दाता देव काल हु के काल महाकाल हु के काल हैं पूर्वी ना पार पावे हिंगला हिमालय धावे गोर गर तेजी गुण गावे तेरे नाम है जोगी जोग साधे पवन साधना की देख बाधे आरब के अरबी अराधे तेरे नाम है फरागी फरंगी माने कंधारी कुरेसी जाने पश्चम के पश्चिमी पछाने निज काम है मराठा मंगले तेरी मनसो तपस्या करे दृढ़ वे तिलंगी पहचाने धर्म धाम है बंग के बंगाली फेर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिल वाली तेरी आज्ञा में चलत है रो के रोहिले मांग देश के मंगेले वीर बंग सी बुंदेले बाप पुंज को मलत है गोखा गुण गावे चीन मचीन के शीश नी आवे तिब्बती ध्याय दो दो को दलत है जिने तो हे ध्यायो तीने पूरन प्रताप पायो सर्व धन धाम फल फूल सो फलत है देव देवतान को सुरे दान बान को महेश गंग धान को अभेद कही अत है रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और कहूं पे न अधीन साध अधीन कही अत है पाइये न पार तेज पुंज में अपार सर विद्या के उदारे अपार कही अत है हाथी की पुकार पाले पाछे चौपहो जात चाहे चीटी की चिंगार पहले ही सुनी अत है केते द्वार केते ब्रह्मा मुगचार केते कृष्णा अवतार केते राम कही अत है केते सस राशि केते सूरज प्रकाश केते मुंडिया उदासी जोग द्वार दही अत है केते महादीन केते व्यासे प्रवीण केते कुमेर कुलीन केते जाच कही अत है करते है विचार पहना पूरन को पावे पार ताही ते अपार निराधार लही अत है पूरन अवतार निराधार है न पारावार पाइये न पार पे अपार कह बखानी है अद्वे अविनाशी परन पूरन प्रकाशी महारूप हो के राशि है नासी कह कह मानी है जंत्र हूं ना जा जा की बाप हूं ना मायता की पूरन प्रभा की छटा पूरन प्रभा की सो छटा कहन मानी है तेज हूं को तंत्र के राशि को जंत्र के मोहनी को मंत्र निजंत्र कह के जानी है तेज हूं को तरह के राशि को सारे के शुद्धता को घर के शुद्धता की सार है कामना की खाने साधना की सान है विरक्तता की बान के बुद्ध को उदार है सुंदर स्वरूप के भूपन को भूप के रूप को रूप को मत को प्रहार है दीनन को दाता है गनी मन को कारक है साधन को रक्षक है कुनन को पहार है सिद्ध को स्वरूप के बुद्ध को विभूत के क्रोध को अभूत के अच्छा विनाशी है काम को गुनिंदा के खुबी को दिहिंदा का नीमन गरिंदा के तेज को प्रकाशी है कालहु के काल के सतरन के साल के मित्रन को भुगत के वृद्धता की बासी है जोग हूं को जंत्र के तेज हूं को तंत्र के मोहनी को मंत्र के पूरन प्रकाशी है रूप को निवास के बुद्ध को प्रकाश के शुद्धता को वास के बुद्ध को घर है देवन को देव है निरंजन अभेव है अदेवन को देव है के शुद्धता को सर है जान को बचाए मान को दिवैया जम जाल को कटे कामना कर है तेज को प्रचंड अखंड को खंडे महिपन को मंडे के स्त्री है ना नर है विश्व को भरने के आपदा को हरने के सुख को करने के तेज को प्रकाश है पाइये ना पार पारावार हु को पार जा को कीजर विचार सो विचार को निवास है हिंगला हिमालय गावे हब सी हलब भी जावे पूर्वी ना पार पावे आसाते अनास है देवन को देव महादेव हु के देव है निरंजन अभेव ना दद्वे अविनाशी है अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण के सेवक अधीन कटैया जम जाल के देवन के देव महादेव हूँ के देवनाथ भूम के भुजैया मुहया माँ बाल के राजन के राजा माँ साजू के साजा माँ जोग हूँ को जोग धरैया ध्रुव छाल के कामना करे के बुद्धता को हरे के शुद्धता की शादी के काल है कुचाल के शीर कैसी शीराव छात कैसी छतरा ने छपा कैसी छप कालिंद्री के कुल के हंसनी सी सिहारम हीरा सी हुसैनाबाद गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के परासी पलाऊगढ़ रूपा कैसी रामपुर सोरासी सुरंगावानी के रही झूल के चंपा सी चंदरी कोट चांदनी सी चांदा को गाड़े कीरा तिहारी रही मालती सी फूल के फटक सी कैलाश कमाओ गण काशीपुर सीसा सी सिरंगा बानी के सोई अत है हिमासी हिमालय हर हाव सी हल्लब बानेर
हंस कैसी हाजीपुर देखे मोही आते हैं, चंदन सी चंपावती चंद्रमासी चंद्रागिर चांदनी सी चांदागढ़ जोन जो ही आते हैं, गंगा सम गंगधार बकांसी बिलंदाबाद कीरा तिहारी की उजियारी सोही आते हैं, फरासी फिरंगी फरासी इसके दुरंगी मकरान के मृदंगी तेरे गीत गाई आते हैं, बखरी कंधारी गोर गखरी कर देदाचारी पौन के हारी तेरो नाम ध्यायत है, पूरा पलाव काम रूपा कमाओ सर्व ठौर में विराजे जहाँ जहाँ जाइयत है, पूरन प्रतापी जंत्र मंत्र ते अतात पी नाथ कीरत तिहारी को ना पा।

अच्छा स्वरूप अव्यक्त ना आजान बाओ सर्वा प्रमाद जाता महीप बंतन प्रफुल्ल शोभा बसंत जाता प्रडुल्ल बंत इंदुरंत खग मृग महान जाता प्रफुल्ल सुंदर सुजान फुल तंग प्रफुल्ल लत मोर सिर ढुर जान मन मत चार कुजरत कमाल।

जाता प्रफुल सुंदर सुजान बन तन महीप जल तल महान जहता प्रसो करना निधान जगमगत तेज पूरन प्रताप अंबर जमीन

लेकिन वेख तू ने ता सारियां चीटियां मार दितियां, ए क्यों कीता? ए ता अन्याय कीता है। चलो एक आदि जिन्हें तेनू डंग मारना कीता ते ओनू जे तू मारदा ते आपां कहिंदे आ कि हां जी इन्हें ये करना कीता, डंग मारिया, दंदी बटनी कीती, तूने ओनू मारिया, बाकियां दा की गुनाह है, की दोष है? सारियां नू तूने मसल दिता, सारियां नू मार दिता। ते कहण लगा सतगुरु महाराज मैनू गुस्सा बड़ा चढ़िया सी, ते नाल मैनू पता भी नहीं चलिया उस वेले, क्योंकि बेशक एक चीटी ने मैनू लड़ना कीता, डंग मारना कीता, बाकियां ता नहीं होया, लेकिन जे मैं एक नू ए वेखदे रहिंदा ते बाकियां ने भी मैनू दंदी बढ़नी सी, बाकियां ने भी मैनू मारना। उन्होंने इस गुनाह दे विच उहदा साथ दिता, उह सारे रल करके आए, तां करके मैंने काड़ी दे विच रफ्तार दे विच सारियां नू रगड़ दिता। महाराज ने बचन किया कि इस तरह ही हुंदा है। कई वारी की हुंदा, कुछ बंदे गुनाह करते हैं, दोख कमाते हैं, उहदा नतीजा सारियां नू, उहदे परिवार नू, उस नगर दे लोकां नू, उस शहर दे लोकां नू, उस देश दे लोकां नू भोगना पैंदा है। लड़ाइयां भी जदों होंदियां ना साथ संगत जी, हुण मैं आप नू बेनती करां, कई थावां ते ना देशां दे विच ते लड़ाइयां चल रहियां हन, विश्व युद्ध दे माहौल जिहड़े बन रहे हन, वेख्या जावे आम पब्लिक दा की है इहदे विच? आम लोकां दा कोई कसूर नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। चंद बंदे जिहड़े हन, वड्डे वड्डे हाकम, वड्डे वड्डे जिहड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जिहड़े हन, उहनां दा किहदे नाल झगड़ा है, किसे कारण करके झगड़ा है, इहदे करके सारे लोकां नूं उह लपेट रहे हन। उह अपना झगड़ा कढ़न दे लई आम पब्लिक नूं मार दे, उहनां नूं खत्म कर दे। इहदे विच वड्डियां दा तां कोई वड्डा नुकसान नहीं हुंदा, उह तां अपने घरां दे विच लुक जांदे हन, छुप जांदे हन, लेकिन आम पब्लिक, आम लोग इहदे विच पिसे जांदे हन। इस तरह ही हुंदा है। ते बाबा जी ने यही वचन किया कि अज जो तुसी सानू बोलदे, जे उस वेले इस तरह ही बेबाकी दे नाल बोलदे कि देख भाई तू ये पाप कर रहा, गुनाह कर रहा, असी नहीं ये होण देना, ते सानू भी तां कुछ महसूस हुंदा सी। जिस तरह मलेरकोटले दे नवाब ने हादा नारा मारिया, ओ तो बाद कोई दूजा तीजा भी जे मारदा तां गल जिहड़ी है बणदी ना। एक प्यारियो मैनू चंगी तरह याद है, बहुत वड्डी कोई कॉन्फ्रेंस चल रही सी, इस कॉन्फ्रेंस दे विच कवि वड्डे वड्डे कवि जिहड़े हन उहनां नू बुलाया गया, दास भी उत्थे हाजर सी, ते उत्थे बहुत सारे मुसलमान कवि जिहड़े हन ਉਹ ਵੀ ਆਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੇ ਨਵਾਬ ਨੇ, ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਭੁੱਲਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਮੁਗਲੀਆ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਰਾਜੇ ਰਜਵਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਮਾਰਨ

सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आज जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत तुत पाता, सकल मलेच करो रण घाता। जे अस ध्वज तौ शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत होए मरे। पुरख जावन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार धिए हैं, ताके काल निकट न हैं। रक्षा होए ताहीं सब काला, दुष्ट अरिष्ट टर

सर्व समूह खालसा जी की अरदास श्री वाहिगुरु जी के पास, जहां जहां गुरु खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत, बिरद की पैज रहे पंथ की जीत, श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी का मन नीवा, मत ऊंची मत पत का राखा आप, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। खालसे जी की देख तेग फतेह, चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल रहे, धर्म का जयकार। खालसा जी साहिब बोलो जी। खालसे जी को नाम दान, सिखी दान, गुरमत दान, बुद्ध बबेक रहत रिछा दान। खालसे जी को श्री हरमंदर साहिब, अमृतसर सरोवर जी के स्नान, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दार मेले बोलो जी। श्री अकाल तख्त साहिब जी, संतोख सर जी, बबेक सर जी, राम सर जी, कौल सर जी, तरन